मीडियो वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार दिए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29

0: जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के खंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में धान की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: किसान भाइयों, आज हम धान की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंध के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे कैसे और कब इसमें सिंचाई की जाए एवं कब उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। पहले सिंचाई के बारे में चर्चा करते हैं। धान की खेती में उचित जल प्रबंध के लिए 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला यह कि वर्षा के पानी का भरपूर उपयोग किया जाए। इसके लिए खेत को समतल बनाना तथा उसकी मेड़बंदी करना आवश्यक होता है। यह कार्य पहले ही किया जाता है। दूसरी बात यह कि बहुत अधिक पानी यदि खेत में लगातार लगा रहे तो उसकी निकासी की व्यवस्था हो। और तीसरी बात ध्यान में यह रखना है कि जब बारिश ना हो तो धान में सिंचाई की निजी व्यवस्था की जाए। यह कहावत कि धान पान और केला तीनों पानी के हैं चेला, 16वां सही है। वास्तव में धान की फसल में कुछ अवस्थाएँ ऐसी होती हैं जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे जब धान की रोपाई की जाती है तो रोपाई के 1 सप्ताह तक खेत में पानी लगा रहना चाहिए। यहीं पर यह भी बात आती है कि फसल में कितना पानी दिया जाए। इसके लिए किसान भाई यह जान लें कि खेत में 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक ही पानी होना चाहिए। इसके अलावा कल्ले फूटने की अवस्था, बाली निकलने तथा दाना भरने की अवस्था में भी खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इन अवस्थाओं में यदि समय से बारिश हो जाती है तब तो समझो ठीक है, और यदि बारिश ना हो तो सिंचाई अवश्य करना चाहिए। इन अवस्थाओं के अतिरिक्त अन्य समय में तो सिंचाई करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन खेत की मिट्टी तर ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, रोपाई के 40 से 50 दिन के बीच खेत से पानी एक बार ज़रूर निकाल देना चाहिए। धान की फसल से बहुत से किसान भाई पानी नहीं निकालना चाहते हैं, लेकिन यह उचित नहीं। समय समय पर जल निकासी से जड़ों की बढ़वार सुचारू रूप से होती है, साथ ही हानिकर फफूंदी तथा कीड़े मकोड़ों का प्रभाव भी कम होता है। हमारे देश में धान की उपज कम होने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण खरपतवारों से होने वाली हानि है। कभी कभी तो खरपतवारों की वजह से नाम मात्र की ही उपज प्राप्त होती है। ये खरपतवार फसल रोपने या बोने के साथ ही निकलते हैं तथा धान के खेत से पोषक तत्वों एवं जल का उपयोग करते हैं। यहीं पर हमें एक और खास बात भी जान लेनी चाहिए, वह यह कि इन खरपतवारों का नियंत्रण फसल रोपने के 20 से 40 दिन के अंदर

0: अंदर ही कर लिया जाए, क्योंकि इसी अवधि में खरपतवारों से फसल को ज़्यादा नुकसान होता है। खरपतवार नियंत्रण के बाद नतजनी उर्वरकों का बुरकाव करते हैं। यदि बोया गया धान है तो प्रति एकड़ की दर से 40 किलोग्राम यूरिया कल्ली फूटते समय और 10 किलोग्राम यूरिया बाली बनते समय खेत में बुरक देना चाहिए। अगर देसी प्रजातियों की बुआई किए हैं तो उसमें उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने धान की रोपाई की है तो शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे साके 4, मनहर आदि के लिए 20 किलोग्राम यूरिया कल्ले बनते समय तथा शेष 20 किलोग्राम यूरिया को बाली बनने की प्रारंभिक अवस्था में प्रति एकड़ की दर से खेत में भुरक देना चाहिए। यदि IR8, जया, सरयू 52, पंतधान 4, सीता जैसी मध्यम देर से पकने वाली किस्में हैं तो 25 किलोग्राम यूरिया कल्ले बनते समय एवं 25 किलोग्राम यूरिया बाली बनने की शुरुआत की अवस्था में खेत में बुरकाव कर देते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर धान की फसल में सिंचाई एवं उर्वरक प्रयोग करना चाहिए।
1: धान की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। कार्यक्रम था खेती की बातें। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। निवेदित हैं भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत। आदिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है।

भगवान भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। उनको चढ़ावे आदि अनुष्ठानों से कोई सरोकार नहीं। भगवान को जो दिल से चाहे, भगवान उसके हो ही जाते हैं।

0: आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत। आज इसमें आपने जिन गायक कलाकारों को सुना वो थे नरेंद्र चंचल, अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए सुने विचार बिंदु।
1: ये सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में उनके योगदान के कारण है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत और भारतीय पुनर्जागरण के अधिष्ठाता के रूप में जाना जाता है। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य शाश्वत भगवान की पूजा करना था। ये धार्मिक आडंबरों का प्रतिरोध था। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, जहां सामाजिक बुराइयों की निंदा की गई और उन्हें समाज से दूर करने के प्रयास किए गए। इससे भारत में तर्कवाद और ज्ञानोदय का उदय हुआ, जिसने परोक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया। राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को उस समय के समाज में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों के प्रति जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत था। आधुनिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित राजा राम मोहन राय ने तर्कवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता समाज की स्थिति में सुधार करने के बजाय चोट का कारण बन गई है। ये सामाजिक सद्भाव और विकास का मार्ग अवरुद्ध कर रही है। राजा राम मोहन राय मानते थे कि बलिदान और कर्मकांड लोगों के पापों की भरपाई नहीं कर सकते, ये आत्मशुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से ही किया जा सकता है। उनका ये भी मानना था कि धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों एक ही हैं। राजा राममोहन राय सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। राजा राममोहन राय एक ईश्वर में आस्था रखते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक महिलाओं को अमानवीय उत्पीड़न जैसे अशिक्षा, पर्दा, बाल विवाह आदि से मुक्त नहीं किया जाता। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को मानवीय और सामाजिक भावना के उल्लंघन के रूप में और नैतिक पतन के लक्षण के रूप में चित्रित किया। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल प्रांत के हुगली जिले के राधानगर में 22 मई 1772 को हुआ था। उनके पिता का नाम रमाकांत और मां का नाम तारिणी देवी था। उनकी शिक्षा बहुत अच्छी हुई थी। वे संस्कृत, पारसी और अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। इसके अलावा वे अरबी, लैटिन और ग्रीक भाषा के भी जानकार थे। राजा राममोहन राय को वेदों और उपनिषदों का भी ज्ञान था और उन्होंने उपनिषदों के सिद्धांतों को शिक्षा में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए और धार्मिक कुरीतियों का पूरे धार्मिक तर्कों के साथ विरोध किया, जिसका अच्छा खासा असर पूरे समाज पर पड़ा। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आधुनिक भारत में समाज और धार्मिक सुधार के लिए एक प्रमुख जरिया बना। राममोहन राय ने आधुनिक शिक्षा की खूब पैरवी की। वे चाहते थे कि भारत की अच्छी परंपराओं का पश्चिम संस्कृति में विलय हो। उन्होंने खुद देश में बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की, जिसमें आधुनिक शिक्षा तंत्र को लोकप्रियता मिली। उनके लेखन का प्रभाव भारत के लोगों पर ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका के

0: लोगों पर भी अच्छा खासा पड़ा। राजा राम मोहन राय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वर्नाक्यूलर प्रेस के अधिकारों के लिए उनके द्वारा छेड़ी गई लड़ाई प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मील का पत्थर है। उन्होंने फारसी में मिरातुल अखबार नामक समाचार पत्र और संवाद कौमुदी नामक बांग्ला साप्ताहिक भी निकाला। राजा राम मोहन राय अपने समय के उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को महसूस किया। वो जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श स्वतंत्रता से अलगाव में नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के आपसी सहयोग के साथ साथ व्यक्तियों की अंतर निर्भरता और भाईचारे में है।
1: आप सुन रहे थे विचार बिंदु कार्यक्रम, 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा, इसमें आज का विषय है ग्लूकोमा, कारण और समुचित चिकित्सा। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा के उपचार के बारे में। सबसे प्राइमरी उपचार इसका आई ड्रॉप्स है। अधिकांश मरीजों में उपचार के लिए आई ड्रॉप्स से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप्स नियमित डालना, समय पर डालना अत्यंत आवश्यक है। कभी भी अपनी मर्जी से ग्लूकोमा की ड्रॉप को बंद नहीं करना चाहिए। ग्लूकोमा के दूसरे इलाज के तौर पे लेजर से ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट किया जाता है। यह कम समय में होने वाली एक सुरक्षित प्रक्रिया है और कई मरीजों में अत्यंत लाभदायक हो सकती है। जिन लोगों को इनसे भी लाभ नहीं होता या फिर वो मेडिकल या फिर लेजर से कंपेटिबल नहीं होते हैं, उनको हम ऑपरेशन के बारे में उनके लिए सोचते हैं। यदि दवाओं और लेजर से दबाव नियंत्रित नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन आवश्यक है। आज आधुनिक तकनीक से ग्लूकोमा सर्जरी पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रभावी हो चुकी है। क्या घरेलू उपचार संभव है? घरेलू उपचारों से ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी घरेलू नुस्खा, आयुर्वेदिक दवाई या चश्मा ग्लूकोमा का इलाज नहीं कर सकती। केवल योग्य नेत्र रोग विशेषज्ञ के सलाह से ही इसका उपचार संभव है। जीवन शैली का महत्व है। दवाइयां नियमित तौर पर लेनी चाहिए ग्लूकोमा के लिए। समय समय पर डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर और हाई बीपी को कंट्रोल में रखना चाहिए। धूम्रपान से बचना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और बिना डॉक्टर परामर्श के स्टीरॉयड दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जीवन शैली में आधारित ये चीजें हमको ग्लूकोमा से बचाती हैं। बच्चों में भी ग्लूकोमा हो सकता है, लेकिन इसका रेशियो बहुत कम होता है। एक जन्मजात ग्लूकोमा की बिल्कुल अलग कैटेगरी है जो बच्चों में ही होता है। ग्लूकोमा से संबंधित लोगों में कुछ भ्रम होते हैं, मैं उनको दूर करना चाहूंगा। कभी भी चश्मा पहनने से ग्लूकोमा ठीक नहीं हो सकता। लोगों में भ्रम होता है कि आंखों में दर्द है तो आंखें स्वस्थ, दर्द नहीं है तो आंखें स्वस्थ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकांश ग्लूकोमा में कोई दर्द नहीं होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम ग्लूकोमा की मेडिसिन चला रहे हैं तो कुछ महीने के लिए उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन इसका भी सत्य यही है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी ग्लूकोमा की दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, आपको यही कहना चाहूंगा कि आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है। ग्लूकोमा एक ऐसा रोग है जो बिना किसी चेतावनी के धीरे धीरे दृष्टि छीन सकता है, लेकिन यदि समय पर जांच कराई जाए और नियमित उपचार लिया जाए तो इस बीमारी से होने वाले अंधत्व को काफी हद तक रोका जा सकता है। आइए स्वयं भी जागरूक बने और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य, विशेषकर 40 वर्ष से अधिक आयु वालों को नियमित नेत्र परीक्षण के लिए प्रेरित करें। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी को। विषय था ग्लूकोमा, कारण और समुचित चिकित्सा। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी वाराणसी है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

केवट से निहोरा करके श्री रामचंद्र पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार तो उतर गए, किंतु केवट को उतराई देने की उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की तथा सीता ने गंगा से हाथ जोड़ अपना मनोरथ पूरा करने की प्रार्थना की। माँ गंगा को रघुवीर की प्रियतमा की महिमा ज्ञात थी, फिर भी उनकी विनती सुनकर भागीरथी ने कहा, हे सीते, तुम अपने प्राणनाथ तथा देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे और तुम्हारा यश संपूर्ण जगत में छाएगा। उधर श्री रामचंद्र ने केवट को भक्ति का वरदान देकर विदा करना चाहा, तो निषाद राज ने दो चार दिनों तक उनके साथ रहकर उनके चरणों की सेवा करने की अनुमति चाही। भक्त वत्सल भक्त की प्रार्थना कैसे न मानते। सीता लक्ष्मण सहित उन्होंने श्री गणेश तथा शिवजी का स्मरण किया तथा माँ गंगा को सिर नवा निषाद राज को साथ लेकर वन की ओर चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आज की इस कड़ी के गायक कलाकार थीं शोभा जोशी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए जानकारी दे दें आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

संसद समीक्षा होगी रात्रि 8 बजे से और संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण समय होगा रात्रि 10 बजे से। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। विधानमंडल समीक्षा होगी रात्रि 8:20 पर और उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में आज सुबह 7:31 पर सुनिएगा विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन और दिन में 12:45 पर सुनिएगा विदुषी शुभा मुद्गल का उपशास्त्रीय गायन। सुगम संगीत में दोपहर 12:30 पर आज कलाकार होंगे मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल। अंग्रेजी कार्यक्रम में शाम 7 बजे प्रोफेसर मनीष अरोड़ा से आकांक्षा सिंह की बातचीत सुनिएगा। विषय होगा हैंडलूम अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन एंड सस्टेनेबिलिटी। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई अन्य बातों के अलावा सुनेंगे शिवशंकर पटेल व साथियों का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं दिन में 1:45 पर और सुबह 9:50 पर।

युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा शाम 5:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण होंगे आज की बात, मार्गदर्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। कुछ बातें कुछ गीत, ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दिन में 2:30 पर। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी चर्चा, बातचीत, सेहत ज्ञान और गीत संगीत। समय होगा दिन में 1:15 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे से। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो होगा व्हाट्सएप पर आधारित, ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे झनकार सुबह 10 बजे से। सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम

मधुरिमा का प्रसारण होगा सुबह 8:45 पर। गुड मॉर्निंग बनारस रोज की तरह आप सुनेंगे सुबह 7 बजे से। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5 बजे, 6:10 पर, 7:31 पर रसरंग में और रात्रि 8:30 पर रसमाधुरी के अंतर्गत। ये थी जानकारी आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: विविध विषयेषु विचार विमर्शः भविष्यति तेषु प्रारंभिक बाल शिक्षायाः बाल परिचर्यायाः च सुदृढीकरणं कौशल विकासस्य संवर्धनं परस्पर सहकार्यस्य वर्धनं तथा संयुक्तानुसंधानस्य नवोन्मेषस्य नवोद्यमानां च प्रोत्साहनं प्रमुखतया समाविष्टानि सन्ति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी त्रयोदशे ब्रिक्स शिक्षा मंत्रिणाम् उपवेशने भागं ग्रहीष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालययोः अतिवृष्ट्यै रक्त वार्णिकी संचेतना प्रख्यापिता इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: जाएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: अप्पा
1: आ गई है बनारसी कुड़ी। सो बनारस, लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
0: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक, मस्त और बढ़िया हैं। बढ़िया होना लाजमी भी है। अगस्त का पहला हफ्ता आ गया है गुरु, सावन का महीना शुरू हो चुका है। रिमझिम फुहारे गिर रही हैं और गंगा मैया की आरती की गूंज से पूरी काशी इस समय भक्ति और सुकून के रंग में डूबी हुई है। सच बताइए, आज सुबह सुबह 80 घाट पर या गुदौलिया चौराहे पर कुल्हड़ वाली चाय और गर्मा गर्म कचौड़ी जलेबी का आनंद किसने किसने लिया? अगर नहीं लिया तो बॉस, आज की सुबह का एक बड़ा सुख आपने मिस कर दिया। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे हफ्ते बनारस पर बादल मेहरबान रहने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू कीप योर रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास विथ यू। अच्छा, बारिश का मौसम हर दिल पर एक अलग ही दस्तक देता है। जैसे ही आसमान का मिजाज बदलता है, इंसान का मन भी मचल उठता है। जहां कुछ लोगों को इस मौसम में सुस्ती घेर लेती है, वहीं दूसरों के लिए एकाग्रता और नए विचारों में डूब जाने का एक सुनहरा अवसर बन जाता है। ये तपती गर्मी के बाद जब बारिश की बूंद जमीन से टकराती है तो उससे उठने वाली वो सोंधी खुशबू, ठंडी हवा का झोंका और बादलों की गड़गड़ाहट, ये सब मिलकर हमारे दिलों दिमाग को छू जाते हैं। बारिश अपने साथ ठंडक, हरियाली और उल्लास लेकर आती है। कई लोगों को बारिश में राहत महसूस होती है तो कुछ लोग उदासी, सुस्ती और भारीपन का अनुभव करते हैं। बारिश के इन दो तरह के प्रभावों पर विज्ञान कहता है कि ये असर काल्पनिक नहीं है। बारिश की बूंदें उनकी ध्वनि, कम रोशनी, ठंडक, नमी और दिनचर्या में बदलाव आने से मनुष्य के दिमाग की कार्य प्रणाली भी प्रभावित होती है। जब बारिश की बूंदें जमीन से टकराती हैं तो हवा में नेगेटिव आयन घुल जाते हैं। ये वही आयन हैं जो आपको किसी झरने के पास या समुद्र के किनारे ताजगी का एहसास कराते हैं। बारिश की आवाज में एक खास तरह की रिदम होती है। बूंदों का गिरना, पानी का टपकना, खिड़की से आती हल्की ध्वनि, ये सब मिलकर एक ऐसा नाद रचते हैं जो मस्तिष्क को सुकून देता है। बारिश का ये स्वर स्थिर होता है जिससे कई लोगों का ध्यान एकाग्र होता है और मन का भटकाव कम हो जाता है। कुछ शोध बताते हैं कि बारिश की बूंदों जैसी प्राकृतिक ध्वनियां हमारे दिमाग को विश्राम की अवस्था में ले जाती हैं। क्योंकि भीगती है धरा जब सावन में, अंतर मन भी अपनी उदासी धोकर मुस्कुरा देता है। ये बारिश का जादू ही है जो शोर शराबे में भी अंदर छिपे कवि को जगा देता है। बारिश सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये अपनी रूह से मिलने का एक बेहद हसीन जरिया है। मिट्टी की सौंधी खुशबू में अक्सर खोया हुआ मन खुद को दोबारा ढूंढ ही लेता है ना। गुड मॉर्निंग बनारस।

हाँ जी, ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। तारीख है आज 5 अगस्त 2026 और दिन है आज बुधवार का। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर में आज खास। देखिए, लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क चौड़ीकरण का काम कराया जा रहा है और बाधक बन रहे पोल की शिफ्टिंग आज कराई जाएगी। पांडेपुर उपकेंद्र से निकलने वाले लालपुर फीडर, लेड़ूपुर उपकेंद्र से आशापुर फीडर, दौलतपुर उपकेंद्र से भक्तिनगर फीडर से सुबह 10 बजे से 1 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान पांडेपुर, काली माता मंदिर चौराहा, राय साहब का बगीचा के आसपास, रुस्तमपुर, पैगम्बरपुर, नटुई, सिंचाई विभाग कॉलोनी, चंद्रा चौराहा, आशापुर में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि काशी से अयोध्या जाने वाली ट्रेनें अब अयोध्या धाम जंक्शन पर 2 मिनट की जगह 5 मिनट तक रुकेंगी। जी हां, सावन को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यह फैसला लिया है। अहमदाबाद वाराणसी सिटी साबरमती एक्सप्रेस, वाराणसी सिटी अहमदाबाद, फरक्का एक्सप्रेस, गंगा सतलुज एक्सप्रेस अब अयोध्या धाम जंक्शन पर 5 मिनट रुकेगी। इसी तरह जम्मू तवी एक्सप्रेस का स्टॉपेज भी अयोध्या में 5 मिनट तक ही होगा। इसके साथ ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के क्षेत्र में आने वाले वाराणसी समेत आसपास के जिलों में बिजली बिल में गड़बड़ी दूर कराने सहित अन्य समस्याओं को लेकर 31 अगस्त तक बिजली बिल समाधान शिविर लगाया जाएगा। कार्मिक और जनसंपर्क अधिकारी संदीप वर्मा के अनुसार 31 अगस्त तक खंडीय उपखंडीय कार्यालयों पर विशेष बिल समाधान शिविर लगेंगे। और सावन में काशी का कोना कोना अब और भी अधिक शिवमय, आध्यात्मिक और दिव्य अनुभूति से सराबोर होने जा रहा है। भोर की पहली किरण के साथ ही शहर में शिव स्त्रोत की मधुर स्वर लहरियां गूंजेंगी। कल मंगलवार को मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी सभागार में हुई कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। तय हुआ कि आज बुधवार से शहर के 55 प्रमुख चौराहों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक शिव स्त्रोत गूंजेगा। बैठक में सावन और आगामी बाढ़ की आशंका को देखते हुए कार्यकारिणी ने नगर प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सावन के दौरान हर शिवालय और मंदिर परिसर के आसपास की व्यवस्था प्लास्टिक मुक्त रखी जाएगी। कांवड़ियों के सुगम आवागमन, विश्राम स्थलों के निर्माण और सार्वजनिक शौचालयों की 24 घंटे निःशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शहर में गंगा और वरुणा नदी के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर बाढ़ राहत शिविरों में शुद्ध पेयजल, बेड, भोजन और साफ सफाई की व्यवस्था करने को कहा गया है। और काशी में बारिश की स्थिति में सुधार आया है। 2 दिनों में

5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। इससे सीर, गोवर्धन, बजरडीहा, जैतपुरा, अंधरापुल, भदौ, चुंगी और महमूरगंज सहित कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक काशी में अब तक 231 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि काशी में अब तक 407 मिलीमीटर बरसात हो जानी चाहिए थी। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। अब तक चेतावनी नहीं दी गई है। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर अतुल कुमार सिंह के अनुसार मानसूनी द्रोणी उत्तर दिशा में खिसककर अपनी सामान्य स्थिति में उत्तर में अनूपगढ़, दिल्ली, शाहजहांपुर, छपरा होते हुए नागालैंड की ओर है। ये प्रदेश के दक्षिण मध्य भाग से निकल रही है। गंगा के मैदानी इलाकों में मानसूनी प्रवाह मजबूत है। आगामी 2 से 3 दिनों में प्रदेश में सक्रिय मानसून परिस्थितियों के प्रभाव से भारी बारिश होने की संभावना है और हम सब भी यही चाहते हैं कि अब बारिश जो है वो हो जानी चाहिए और अच्छी बारिश होनी चाहिए, है ना? तो जी, ये रहा अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 5th of August। आज के दिन साल 2019 में भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही 2020 में आज के दिन अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक तौर पर भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया था। और बर्थडेज की बात की जाए तो आज के दिन ईयर 1969 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का जन्म हुआ। ईयर 1974 में लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल का, और ईयर 1987 में आज के दिन ही मुंबई, महाराष्ट्र में जन्म हुआ बॉलीवुड अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख का। तो इन सभी को आकाशवाणी वाराणसी की तरफ से ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। एंड नाउ बनारस, लेट्स मूव ऑन टू योर फेवरेट सेगमेंट, बात जरूरत की। देखिए, दांतों में दर्द, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना या बार बार होने वाला इन्फेक्शन, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे बड़ी संख्या में लोग परेशान रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद एक छोटा सा मसाला इन परेशानियों से बचाव में मदद कर सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लौंग की। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक करीब 95% व्यसक किसी न किसी ओरल हेल्थ समस्या से जूझते हैं। वहीं हाल की कुछ स्टडीज बताती हैं कि लौंग में मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड्स मसूड़ों की सूजन कम करने और दांतों पर जमे प्लाक को घटाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे लौंग के ओरल हेल्थ बेनिफिट्स की, साथ ही जानेंगे लौंग में कौन से पोषक तत्व होते हैं, इसे कितनी मात्रा में खाना सेफ है और किन लोगों को लौंग नहीं खाना चाहिए। देखिए, लौंग में कई एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं। जैसे दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है यूजेनॉल, जो इसमें पाया जाता है, यूजेनाइल एसीटेट, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाता है, गैलिक एसिड और टैनिंस बैक्टीरिया से बचाता है और सेल्स की सुरक्षा करता है। चबाने पर यूजेनॉल रिलीज होता है, जो लौंग का सबसे प्रमुख एक्टिव कंपाउंड है। लार का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिससे खाना पचाने की प्रक्रिया बेहतर होती है। मुंह को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया कम होते हैं। सांसों की स्मेल कुछ समय के लिए कम हो सकती है। दांत और मसूड़ों में हल्का सुन्नपन महसूस हो सकता है। इससे दांत दर्द में अस्थायी राहत भी मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स शरीर में पहुंचते हैं, जो सेल्स को डैमेज और इन्फ्लेमेशन से बचाने में मदद करते हैं। डेली सीमित मात्रा में लौंग खाने से इसमें मौजूद यूजेनॉल और दूसरे एक्टिव कंपाउंड्स शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है, पाचन को सपोर्ट करता है, मुंह की स्मेल कम करता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, मुंह के बैक्टीरिया से लड़ता है, मसूड़ों की स्वेलिंग कम करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, लिवर हेल्थ को सपोर्ट करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम करता है। अच्छा, कुछ हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिनमें लौंग सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, जैसे दांत में दर्द हो तब, मसूड़ों की सूजन में, मुंह की बदबू में, गले की हल्की खराश में, गैस और अपच में और हल्की सूजन में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि लौंग खाने से हमारी याददाश्त यानी कि मेमोरी बढ़ती है,
तो ऐसा नहीं है, ये कहना सही नहीं होगा। हालांकि इसमें मौजूद यूजेनॉल और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स ऑक्सीडेंट

नेगेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करने में भले ही मदद करते हैं, ये दोनों चीजें ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद कर सकती हैं। लौंग खाने का कोई तय समय नहीं है, जरूरत और उद्देश्य के अनुसार इसे सीमित मात्रा में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे खाना खाने के बाद लौंग आप चबा सकते हैं, इससे पाचन में मदद मिलती है और कुछ समय के लिए सांसों की स्मेल भी कम होती है। हल्की खराश होने पर एक दो लौंग चबाया जा सकता है, इससे कुछ लोगों को अस्थायी राहत मिल सकती है। आमतौर पर साबुत लौंग चबाना इसका पानी पीने से ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। चबाने पर लौंग का एसेंशियल ऑयल सीधे निकलता है, इसमें यूजेनॉल समेत कई एक्टिव कंपाउंड्स भरपूर मात्रा में होते हैं। लौंग का पानी बनाने पर इनमें से कुछ ही तत्व पानी में घुल पाते हैं। अगर किसी को साबुत लौंग चबाने में दिक्कत हो तो लौंग का पानी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक दिन में एक से दो साबुत लौंग खाना सेफ है, इससे ज्यादा खाना नुकसानदायक भी हो सकता है। एक स्वस्थ वयस्क के लिए सीमित मात्रा में लौंग सेफ मानी जाती है, लेकिन कुछ लोगों को इसे खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है, जैसे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं जिन्हें लौंग से एलर्जी है, जिन्हें डायबिटीज है, जो ब्लड थिनर्स लेते हैं, जिनकी सर्जरी होने वाली है, जिन्हें पेट में अल्सर है या जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है। ज्यादा मात्रा में लौंग या लौंग का तेल कुछ दवाओं के असर को प्रभावित कर सकता है, जैसे ब्लड थिनर्स, डायबिटीज की दवाएं, सर्जरी से पहले दी जाने वाली कुछ दवाएं। जरूरत से ज्यादा लौंग खाने पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे पेट में जलन, एसिडिटी, मतली मालूम देना, उल्टी, ब्लड शुगर बहुत कम होना, पेट दर्द, मुंह गले में जलन, ब्लीडिंग, लिवर टॉक्सिसिटी। हल्की खराश में लौंग चबाने से कुछ राहत मिल सकती है, इसमें मौजूद यूजेनॉल हल्का सुन्नपन पैदा करता है जिससे दर्द कम महसूस होता है। इसके एंटी बैक्टीरियल गुण कुछ बैक्टीरिया से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं। लौंग से दांतों पर दाग नहीं पड़ते बल्कि इससे ओरल हेल्थ को फायदा होता है, इसलिए अगर आपसे कोई कहे कि लौंग खाने से दांत पर दाग पड़ते हैं तो ऐसा नहीं है। अगर लौंग अच्छी तरह चबाने के बाद मुलायम हो गई है तो उसे निगल सकते हैं, अगर स्वाद पसंद ना आए तो थूक भी सकते हैं। लौंग के ज्यादातर एक्टिव कंपाउंड्स चबाने के दौरान ही निकल जाते हैं, इससे पाचन को सपोर्ट मिलता है और सुबह पेट फूलने की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। इसके एंटी बैक्टीरियल गुण मुंह साफ रखते हैं जिससे सुबह सांसों की स्मेल कम हो सकती है। बात जरूरत की। So I hope आज Good Morning Banaras का ये episode आपको पसंद आया होगा, and if yes then do share your valuable views on pkldairvaranasi@gmail.com। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। And here I'm signing off to take very good care of yourselves। खुश रहिए, प्यार बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कभी भी किसी का दिल न दुखे। Wishing you a very very happy day। Bye bye।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: www.radiomadhuban.in।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:20 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। अब और सख्त हो जाएंगे विलंबित पंजीकरण के प्रावधान। प्रदेश सरकार ने पेश किया 59,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
5: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 59,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240,97,00,000 रुपए की मदद अंशदान के रूप में मिलेगी।
6: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399,50,00,000 रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620,04,00,000 रुपए है। खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 22,107,88,00,000 रुपए, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942,73,00,000 रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 74,022,27,00,000 रुपए और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1,094 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: अनुपूरक बजट में प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

0: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को भरोसा दिलाया कि यह बजट प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
1: सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स है, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स है उसको पूरा करना और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हो उनको करवाना। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
0: उधर सदन में अयोध्या मंदिर चढ़ावा मामले, पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और वेल में आकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर समाजवादी पार्टी के हंगामे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि यह आचरण सदन की अवमानना है।
2: अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया।
0: वहीं मानसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया, जबकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में उर्वरक व बीज का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि खाद व बीज किसानों को समय से नहीं मिल पा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक कल लखनऊ में संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ संपन्न हो गई।
3: यह बयान ब्रिक्स सदस्य देशों में सांख्यिकीय ढांचे को अधिक मजबूत, पारदर्शी और नीति प्रासंगिक आधिकारिक आंकड़ों के लिए आधार तैयार करता है। बैठक के दूसरे दिन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया ने आधिकारिक आंकड़ों, क्षमता निर्माण और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञान के आदान प्रदान, तकनीकी और पद्धतिगत प्रगति, मानव संसाधन विकास, AI, मेटा डेटा मानकीकरण और ओपन डेटा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें ब्रिक्स के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, शिक्षाविद, थिंक टैंक, नागरिक समाज संगठन और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने एक दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे। श्री शेखावत ने यूनेस्को द्वारा सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के पश्चात सारनाथ में धार्मिक स्तूप सहित पुरातात्विक खंडहरों का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की।
4: निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्य का विषय हम सब के लिए है, वाराणसी के लोगों के लिए निश्चित रूप से, लेकिन देश भर के लिए सौभाग्य का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सारनाथ की ये पुरातात्विक महत्व की संपदा, ये स्थल, ये पवित्र स्थल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में नामित हुआ है।
0: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और शामली सहित राज्य के कई जिलों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खेतों में खड़ी कुछ फसलों के लिए भी यह बारिश लाभकारी मानी जा रही है।
5: जनपद हापुड़ में सावन मास की पहली तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान दिखाई दी। किसानों के खेतों में खड़ी गन्ना धान

0: सहित सभी फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी बताई जा रही है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत युवा संगम के 7वें संस्करण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया है। मंत्रालय ने बताया कि इसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। अब और सख्त हो जाएंगे विलंबित पंजीकरण के प्रावधान। प्रदेश सरकार ने पेश किया 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को

0: का अनुपूरक बजट 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:32:15 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन। राग है रामकली। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं दीपक गरुड़ और हारमोनियम पर हैं विश्वनाथ कन्हेरे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन, राग था रामकली। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर दीपक गरुड़ और हारमोनियम पर थे विश्वनाथ कन्हेरे। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यही

0: संपन्न हुआ। 8 बजने को है समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
4: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना आया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
5: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
3: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 3री बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
6: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य

0: देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले दो दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी, जबकि आखिरी दो दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में दो अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो

0: का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
2: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17-23 अगस्त नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के 2-2 खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर मूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा पत्र
4: ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
5: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से, और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का

0: championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदा खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस

0: के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत का परचम बरदार जहाज बोहरा एवर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी दोमाही पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा है कि वो फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निमटने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके तैयार करे। 2026 की नीट यूजी काउंसलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत महकमा मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने BWF आलमी चैंपियनशिप के लिए 9वां मकाम, जबकि सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 5वां मकाम हासिल किया है। खबरें तफसील से। यमन के साहिल के नजदीक बोहरे अहमर में कल भारत का परचम बरदार तिजारती जहाज MCV फैजे नूरे औलिया हमले के बाद डूब गया है। जहाज पर सवार सभी 14 जहाजरा, जिनमें 13 भारतीय शहरी थे, उन सभी को बचा लिया गया है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परचम बरदार टैंकर सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस जहाज को यमन के पानी में हमले का निशाना बनाया गया, इसके बाद ये डूब गया। अब सोनोवाल ने कहा कि भारत दीफा से हासिल भारतीय जहाज पर इस इश्तियाल अंगेज हमले की सख्त मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की सलामती सबसे अहम तरजीह है। इस दौरान वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा, खत्ते में तिजारती जहाज रानी पर हमलों के वाकयात का जारी रहना इंतहाई तशवीशनाक है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि खत्ते में तिजारती जहाज रानी को हमले का निशाना बनाना खत्म होना चाहिए और खत्ते की बैन अवी आबी गुजरगाहों में जल्द से जल्द आजाद और बिला रुकावट जहाज रानी और तजारत को बहाल किया जाना चाहिए। वजारत ने कहा कि रियाज में वाक भारतीय सफारतखाना सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और अमले के अफराद की हिफाजत और सलामती के लिए यमन हुकाम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रहा है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के नाम नहाद मकामी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर तमाशा करार दिया है और कहा है कि इस तरह की खोखली हरकतें सच्चाई को नहीं छुपा सकती। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने इशारा दिया कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुजाहिरीन का जालिमाना कत्ल है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 90 शहरी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी इख्तलाफ का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, जोर जबरदस्ती और धमकियों से दिया है और अब इस तरह की खोखली इंतखाबी मशकों के जरिए उन्हें जायज ठहराने का जवाब ढूंढ रही है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की मुनाफिकाना लफजी को भी सुनना चाहिए। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में मुनद होने वाली ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान की जानिब से इस साल फरवरी के महीने में ओहदा संभालने के बाद उन्हें भारत के तरफा दौरे की रस्मी दावत दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स की सकाफती मीटिंग की मेजबानी की जा रही है। बहुत से मुल्कों के मंदूबीन सकाफत से मुतालिक चार रोजा तबादला ख्याल के लिए यहां पहुंच गए हैं। हमारे नामाचार की एक रिपोर्ट।
2: ये चार रोजा मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनाकिद की जा रही है जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें ब्रिक्स के सकाफती वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स के वज़राए सकाफत की मीटिंग से शामिल हैं। इस तकरीब के लिए शहर की खास तौर पर तज़ईन कारी की गई है। VIP रोड और भोज सेतु को ताज़ा रंगों और मुराल से सजाया गया है। इब्तदाई दो रोज के दौरान सीनियर अफसरान तबादला ख्याल करेंगे और बाद के दो दिन सकाफत के वजीरों की मीटिंग मुनाकिद होंगी। वज़रा एक मुश्तरका ऐलानिये को कतई शक्ल देंगे। भारत ने रुकन मुल्कों के सामने दो अहम तजावीज रखी हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक फनकारों और सकाफती वरसे के लिए एक मुश्तरका डिजिटल प्लेटफॉर्म तख्लीक देने से है और दूसरी तजवीज़ का ताल्लुक ब्रिक्स मुल्कों की तरफ से यूनेस्को की मुश्तरक नामजदगियों की हौसला अफजाई से है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं करीम अहमद।
0: ब्रिक्स के वज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग और ब्रिक्स के सीनियर अफसरान की 30वीं मीटिंग ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में आज से इस महीने की 7 तारीख तक मुनाकिद की जाएगी। وزارت تعلیم نے بتایا کہ ان میٹنگز میں

0: सुनवाएं आपको पहला गाना, आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658,
3: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा
1: संदेश हुआ पूरा। सदाबहार फिल्म गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में आपका स्वागत। पहला गाना फिल्म सामन को आने दो, इस फिल्म से हमने लिया है। आवाजें हैं जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की, गौहर कानपुरी की रचना, राजकमल का संगीत।

जसपाल सिंह और कल्याणी मित्र की आवाज़ें थीं, गौहर कानपुरी की रचना थी और राजकमल का संगीत था। अब आइए सुनते हैं चांदनी फिल्म का गाना सुरेश वाडकर और अनुपमा देश पांडे की आवाज़ों में। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत शिवहरि का।

कार्यक्रम मधुरिमा में आज सावन के गीत हम लेकर आए हैं। भाई सुनते हैं मंजिल फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़ है, योगेश की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गाना। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है मिलन।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जिया।

अब आइए सुनते हैं निगाहें फिल्म का गाना मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं प्यासा साउंड फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। संतोष आनंद के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में फिल्म प्यासा सावन के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा याद यहीं संपन्न हुआ।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
1: विगत दिनों दो दिवसीय दौरे पर आगरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के पहले दिन फतेहाबाद मार्ग स्थित टाटा मैदान पर 342 करोड़ रुपए की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी है। 292 करोड़ से अधिक की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और 50 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। 342 करोड़ की धनराशि सड़क एवं संपर्क मार्गों का विकास, जल निकासी और नाला निर्माण कार्य, नगर विकास से जुड़ी योजनाएं, स्वास्थ्य एवं जन सुविधा से संबंधित परियोजनाएं, शिक्षा एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के कार्य सहित जन से जुड़ी स्थानीय विकास योजनाओं पर खर्च की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा अब विकास की नई पहचान बन रहा है। प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने खंडारी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के शिवाजी मंडप सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के 1.5 लाख से अधिक शिक्षक और उनके आश्रित परिजनों सहित 7.5 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए का कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। इस दौरान शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के बीच MOU साइन किया गया है। आगरा में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय और डॉक्टर MPS कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल द्वारा दीप जलाकर किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की होटल, इंश्योरेंस, व्हीकल सहित एक दर्जन से अधिक नामी लिमिटेड कंपनियों द्वारा 1,500 से अधिक अभ्यर्थियों का पंजीकरण कर तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए 457 युवाओं को रोजगार दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि जितने भी अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आए हैं उन्हें केवल मिलने वाले इस रोजगार से संतुष्ट नहीं होना है बल्कि इससे बेहतर अवसर के लिए भी प्रयास करना है। उन्होंने रोजगार मेले के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और सेवायोजन कार्यालय के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आगरा में विगत दिनों खेत बचाओ अभियान, सुपर एल नीनो और सूखे के प्रभाव के तहत बिचपुरी स्थित RVS कॉलेज के कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित किसानों के साथ संवाद और जनपद स्तरीय तिलहन मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री द्वारा ट्रैक्टर की चाबी, PF कुसुम योजना के तहत सोलर पंप, बिजी मिनी किट, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित तिल के बीजों और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण कर किसानों को लाभान्वित किया गया। बाद में सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर किसानों को बीज, उर्वरक की उपलब्धता कराने के साथ साथ संवाद, प्राकृतिक खेती और किसान जागरूकता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और कहीं भी खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी वहाँ भी जल्द खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में मंत्री ने कहा,
2: चढ़ावा में जो चोरी के मामले आए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने SIT गठित किया और इस बात को साफ तौर पर कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा और कोई भी कितना भी बड़ा होगा प्रभावशाली वो बख्शा नहीं जाएगा। उस संदर्भ में तुरंत SIT बनी और तत्काल 8 लोगों को के ऊपर जो जिम्मेदारियां आई, बरामद भी पैसा हुआ और उनको जेल भी भेजा जाता।
1: विगत दिनों आगरा में वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम को सफल बनाने के लिए करीब 62 लाख वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। वृक्षारोपण महाभियान का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा वृक्षारोपण कर किया गया। आगरा जनपद में 5,000 से अधिक स्थानों पर 61,80,000 से अधिक पौधे रोपे गए, जिनमें 21 लाख पौधे वन विभाग सहित करीब 41 लाख अन्य विभागों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा,
3: वृक्ष जो है वो सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए है, इसलिए इनका लगना जरूरी है, इनकी प्रति चेतना जगाना भी जरूरी है। माँ के नाम एक पेड़, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको भावनात्मक रूप से इसलिए जोड़ा कि सिर्फ रोपित ना करें, उसको पोषित भी करें।
1: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा के सर्किट हाउस में मंडल के अधिकारियों के साथ संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं पर्यटन विभाग की वर्ष 2026-27 की कार्य योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, पर्यटन स्थलों के विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक स्थलों के विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार कार्य कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है।
0: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नई।

0: का।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं स्थित फोर लीव प्रकाशगंज और जहानी बदायूं लखनऊ को नई सीधी रेल सेवा का शुभारंभ बीते दिनों किया। बदायूं ऐशबाग लखनऊ विशेष गाड़ी संख्या 05018 को जहानी रेलवे स्टेशन से दोपहर 12 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रेलगाड़ी बदायूं स्टेशन पर 12:15 पर पहुंचेगी और 12:17 पर यहां से रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली और मोहेबल्लापुर होते हुए 9:10 पर ऐशबाग लखनऊ पहुंचेगी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बताया,
2: बदायूं से लखनऊ के लिए ट्रेन की स्वीकृति ले ली थी और मेरा सौभाग्य है उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला।
1: मरीजों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं परिसर में अमृत औषधि केंद्र का शुभारंभ बीते दिनों उप प्रधानाचार्य डॉक्टर नेहा सिंह की उपस्थिति में किया गया। अमृत औषधि केंद्र का संचालन HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य कैंसर, हृदय रोग सहित अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री को आमजन तक किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत दवाइयां एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री बाजार मूल्य की तुलना में 50-90% तक की छूट पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे मरीजों पर उपचार का आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है। मुख्य विकास अधिकारी बदायूं के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बीते दिनों जनपद की CM डैशबोर्ड पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जनपद स्तरीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैम व मैम बच्चों के सुधार और आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन मशीनों की उपलब्धता पर बाल विकास परियोजनाओं अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए कि आंगनबाड़ी केंद्रवार सैम व मैम बच्चों का कुपोषण प्रबंधन करते हुए पोर्टल पर सुधार की प्रगति करते हुए उनके समक्ष समस्त बाल विकास योजना अधिकारी अपनी अपनी सेक्टरवार और केंद्रवार आख्या प्रस्तुत करेंगे। उनके संबंध में साप्ताहिक बैठक आयोजित कराई जाए और विभाग CM डैशबोर्ड प्रत्येक केंद्र पर समस्त प्रकार की वजन मशीनों की उपलब्धता का विवरण लेकर बैठक में प्रतिभाग करें। साथ ही समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की भी निर्देश दिए गए। जनगणना 2027 के अंतर्गत जिला जनगणना हस्त पुस्तिका के फील्ड कार्यों के सफल, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बीते दिनों आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन ने की। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कहा कि जनगणना 2027 राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है और जिला जनगणना हस्त पुस्तिका का निर्माण उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी चार्ज अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा का पूर्ण अनुपालन करते हुए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करें तथा फील्ड कार्यों को पूरी पारदर्शिता, गंभीरता और उत्तरदायित्व के साथ संपादित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि DCHB फील्ड कार्य के दौरान प्रत्येक चार्ज अधिकारी प्रतिदिन प्रगति से जिला जनगणना अधिकारी को नियमित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कार्यों की सतत समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों द्वारा भी पोर्टल आधारित दैनिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से जिला जनगणना अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण का संचालन लखनऊ से नामित जनगणना अधिकारी प्रदीप सिंह चौहान और मंडल प्रभारी जनगणना अभिषेक कनौजिया द्वारा किया गया। कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों के दृष्टिगत ADG बरेली जोन बरेली रमेश शर्मा व DIG बरेली जोन बरेली अजय कुमार साहनी ने जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के साथ संयुक्त रूप से बदायूं के कछला गंगा घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में सेक्टर व जोन बनाते हुए वह मजिस्ट्रेट अधिकारी नामित किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रकाश की बेहतर व्यवस्था की गई है और CCTV से निगरानी की जा रही है। शिविर के संचालन के लिए भी स्थापना पूर्ण अनुमति लेने सहित अन्य मापदंड बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा आपात स्थिति में त्वरित सहायता एवं प्रभावी समन्वय के लिए कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC तथा पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम से संपर्क करें।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का

वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:25 और 20 सेकेंड्स। आइए सूचना दे दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पहली सूचना आई है कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है राम केर सिंह यादव। इनके पिता का नाम स्वर्गीय राम वृक्ष यादव। ये निवासी हैं गांव कुरहना थाना अलीनगर जनपद चंदौली के। ये पिछले 9 जुलाई 2026 सुबह 5 बजे से लापता हैं। रामकेर सिंह यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 56 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। ये लापता होने के समय हल्का लाल शर्ट और नीले रंग का पैंट पहने हुए हैं। रामकेर सिंह यादव के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। यहीं से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार यह है ज्योति भारती। इनके पिता का नाम है बंदी भारती। ये निवासी हैं ग्राम जलालपुर थाना अलीनगर जनपद चंदौली की। ये पिछले 3 जुलाई 2026 रात 1 बजे से लापता हैं। ज्योति भारती के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 19 वर्ष, कद 5 फुट, रंग सांवला, आँखें और शरीर औसत, बाल काले। ये लापता होने के समय काला सलवार सूट पहने हुए हैं। ज्योति भारती के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को दें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है सोनाली लाल। इनके पिता का नाम है संजय लाल। ये निवासिनी हैं बडूही डूही सूही गांव की, थाना चकिया, जनपद चंदौली की। ये पिछले 15 अगस्त 2026 से लापता हैं, क्षमा करें 15 जुलाई 2026 से लापता हैं। सोनाली लाल के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 21 वर्ष, कद 4 फीट 10 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। ये लापता होने के समय सफ़ेद रंग, लाल रंग का सलवार, छींटदार समीज पहने हुए हैं। सोनाली लाल के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को देने की कृपा करें।

0: कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त एक और सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है आरती यादव, इनके पति का नाम है राम प्रकाश यादव। ये निवासी हैं ग्राम लक्ष्मणगढ़ थाना बलुआ जनपद चंदौली की। ये पिछले 16 जुलाई 2026 दिन 2 बजे से लापता हैं। आरती यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 29 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच, रंग गेहूँ, चेहरा गोल है। ये लापता होने के समय काली साड़ी व पैर में चप्पल पहने हुए हैं। आरती यादव के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को अवश्य दें। इसी के साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: दास्ताना वो आईना है जिसमें हम अपनी ही छुपी हुई दास्तानों, अधूरी ख्वाहिशों और जज्बातों की धड़कन साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। अफसाना महज एक कहानी नहीं है, कोरे कागज पर स्याही का बिखरना नहीं है।

यह सुनकर चंदन मिस्त्री के कान खड़े हो गए। बताएं श्रीमान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सामान्य रूप से जो दहेज लोग अपनी बेटी को देते हैं वो तो आप देंगे ही। ये भी बता दूं कि मेरे लड़के को अच्छी मोटरसाइकिल पसंद है। दूसरी बात ये कि शादी से पहले मुझे 1 लाख रुपए नकद चाहिए, तभी मैं इस मंगनी को पक्की समझूंगा। इंद्रमणि ने बड़े बेबाक अंदाज में कहा। मोटरसाइकिल तो मैं यूं भी दे रहा था, लेकिन 1 लाख रुपया नकद देना हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। इसमें कुछ, चंदन ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, इसमें कमी की कोई गुंजाइश नहीं। इंद्रमणि ने अड़ियल रवैया अपनाया। चंदन ने दोबारा विनती की, मगर बेसुध, ये तो बड़ा लालची है, क्यों ना इसे बेइज्जत करके मंगनी ही तोड़ दी जाए। फिर लड़के की शक्ल और माल दौलत का ख्याल आया, और ये भी कि लड़का अकेला है, तो चंदन ने इंद्रमणि की शर्त मंजूर कर ली। सारी बातें जब तय पा गईं और शादी की तारीख को 1 महीना रह गया, तो चंदन ने लड़के के बारे में छानबीन शुरू की। और ये जानकर कि लड़का हाई स्कूल फेल है, चंदमणि को बड़ा गुस्सा आया। हद है, इसे बीए पास बताया गया था। चंदन के जहन में कई बातें आईं और गईं। गुस्सा कम हुआ तो चंदन ने दोबारा गौर किया, तो कुछ इत्मीनान सा हुआ कि लड़का हाई स्कूल है तो क्या हुआ, जगह जायदाद और दौलत की कोई कमी नहीं, और सोने में सुहागा, लड़का इकलौता है। चंदन ने कोई उज्र नहीं किया। शादी से 1 महीना कब्ल इंद्रमणि का फोन आया। भाई, एक बात कहना भूल गया था, उसे भी समझ लीजिए। बताएं क्या बात है? चंदन ने समझ लिया कि कोई नई फरमाइश होगी। मेरे रूपेश को सोने की अंगूठी और गले में जंजीर पहनने का शौक है। इसे देखिएगा, अंगूठी 2 तोले से कम की न हो। इंद्रमणि बेझिझक होकर कहा, वर के लिए 2 तोले की अंगूठी? इंद्रमणि जी क्या कह रहे हैं? चंदन मिस्त्री ने परेशान होकर कहा, हाँ श्रीमन, हमारे कुल में पहनी जाती है। अच्छा तो ठीक है, कहा और दिल में सोचा, चलो मैंने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। चंदर के जवाब से इंद्रमणि मुतमईन नजर आए, और 1 लाख रुपए तोला सोने की बढ़ती हुई कीमत उन्हें फरहत बख्श लगी। आखिर वो शुभ घड़ी भी आ गई। बारात बड़ी धूमधाम बाजे गाजे के साथ आई, और मंडप की रौनक दुबाला हो गई। शादी की रसूमात मुकम्मल होते ही बाराती खाने पर टूट पड़े। नॉनवेज दूसरे शामियाने में था, जहां ज्यादा भीड़ थी। इतने में इंद्रमणि ने चंदर के शाने पर हाथ रखा, तो चंदर बोले, मैं आपको ही तलाश कर रहा था, ये लीजिए आपकी अमानत। 1 लाख की गड्डी जब चंदन ने इंद्रमणि को थमाई तो उनकी बाँछें खिल गईं। मगर अंगूठी का दीदार अभी बाकी था। अंगूठी भी चंदर साथ ही दे सकता था, इंद्रमणि सोच रहे थे। मेज पर मिठाई, केक, दालमोट और सूखे मेवे की प्लेटें लगी हुई थीं, मगर इंद्रमणि के दिमाग में सोने की अंगूठी घूम रही थी। कोल्ड ड्रिंक हाथ में लिए एक तरफ अलग तलग खड़े रहे, ताकि लेन देन तन्हाई में हो। जब इंद्रमणि के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, तो चंदर के करीब जाकर बड़े बेतुके अंदाज में बोले, ज़रा वो अंगूठी तो लाइए। चंदर मिस्त्री ने तमाम लोगों की मौजूदगी में जोर जोर से कहना शुरू किया, भाइयों, देखो शादी तो हो चुकी, अब इंद्रमणि जी लड़के के पिता वर के लिए 2 तोले की सोने की अंगूठी की मांग कर रहे हैं। भला 2 तोले की अंगूठी भी कोई मर्द पहनता है? परंतु ये कहते हैं कि उनके कुल में पहनी जाती है, तो ठीक है, मैं उनके घर परिवार में चल कर देखना चाहता हूँ, मगर अंगूठी पुरानी चाहिए। नहीं नहीं, जब तक मैं ना लौटूं, बारात यहीं इसी मंडप में रुकी रहेगी, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, वो मेरे दिल का टुकड़ा है, सर पर बार नहीं। इन बातों को सुनकर इंद्रमणि के होश बाकता हो गए। एक झटका सा लगा और सर चकरा गया।

0: उनके समझ में कुछ ना आया कि क्या करें। मंडप में खड़े लोगों में चमगोइयाँ शुरू हो गईं। चंदर फिर वो खातिब हुए। मैं समझता हूँ कि इंद्रमणि जी अंगूठी दिखाने की पोजीशन में नहीं है, तो अब मैं उनकी मुश्किल आसान किए देता हूँ। इंद्रमणि जी ने बताया था कि उनका बेटा BA पास है। अगर ये सच है तो BA क्या अपने लड़के का हाई स्कूल पास का सर्टिफिकेट ही दिखा दें, तो हम उनको 2 तोले की अंगूठी देने को तैयार हैं। इंद्रमणि बेबस और मजबूर खड़े रहे। उनका सर शर्म से झुक गया था। बेटे ने सवालिया निगाहों से अपने बाप को देखा और कहा, पिताजी आपने ये क्या किया?
1: अभी आप अफसाना अंगूठी समाध फरमा रहे थे। अफसाना निगार थे जनाब सैयद अहमद हसनैन। तो सामिन, अफसाना अंगूठी तो मुकम्मल हो गया, मगर एहसासों का सफर कभी खत्म नहीं होता। कहानी जहां अपने घुटने टेक देती है, शायरी वहां से उंगली पकड़कर आगे ले जाती है। तो अब इस महफिल में वो लम्हा आ गया है जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था। इन खामोशी को सुर और साज देने आ रहे हैं हमारी अदबी दुनिया के एक चमकते हुए सितारे, एक बेहतरीन शायर। उनके लफ्जों का जादू जब बिखरेगा तो यकीनन आपके दिल के तारों को छू जाएगा। तो बिला ताखीर मैं सीधे आपको जोड़ती हूँ आज के खास कलाम से, खुद शायर की आवाज में। कलाम शायर हैं डॉक्टर अनुज नागेंद्र।
2: गजल का मतलब ऐसे खिदमत है कि गुंचा तो है ही, गुल भी यहाँ अश्कबार है। गुंचा तो है ही, गुल भी यहाँ अश्कबार है, और आप कह रहे हैं चमन में बहार है। गुंचा तो है ही, गुल भी यहाँ अश्कबार है, और आप कह रहे हैं चमन में बहार है। अब तक ज़रा भी जिससे तबीयत न मिल सकी, अब तक ज़रा भी जिससे तबीयत न मिल सकी, उसका भी दोस्तों में हमारे शुमार है, उसका भी दोस्तों में हमारे शुमार है। गज़ल का शेर कि जब बेकरार मैं था तो उसको करार था, जब बेकरार मैं था तो उसको करार था, मुझको करार आया तो वो बेकरार है, मुझको करार आया तो वो बेकरार है। और मुझको फरेब दे के बहुत मुतमईन है वो, मुझको फरेब दे के बहुत मुतमईन है वो, उसकी इसी अदा पे तो ये दिल निसार है, उसकी इसी अदा पे तो ये दिल निसार है। और एक मतला दो शेर ये भी सुन लें कि आँख सावन का महीना कर गए, आँख सावन का महीना कर गए, मुझको कागज़ का सफीना कर गए। आँख सावन का महीना कर गए, मुझको कागज़ का सफीना कर गए। लौट जाते हैं रफूगर सब के सब, लौट जाते हैं रफूगर सब के सब, इस तरह वो चाक सीना कर गए, इस तरह वो चाक सीना कर गए। फंस गई है जान मेरे जिस्म में, फंस गई है जान मेरे जिस्म में, सख्त मुश्किल मेरा जीना कर गए, सख्त मुश्किल मेरा जीना कर गए। इस कदर मुझको तराशा आपने, इस कदर मुझको तराशा आपने, एक पत्थर को नगीना कर गए। भूल कर मेरी वो सारी नेकियां, भूल कर मेरी वो सारी नेकियां, खून को मेरे पसीना कर गए, खून को मेरे पसीना कर गए। एक मतलब ये भी देखें कि जिंदगी एक दिन अकड़ में आ गई, जिंदगी एक दिन अकड़ में आ गई, शायरी की नस पकड़ में आ गई। जिंदगी एक दिन अकड़ में आ गई, शायरी की नस पकड़ में आ गई, और बात हक कहने की ऐसी लत लगी, बात हक कहने की ऐसी लत लगी, ये खराबी मेरी जड़ में आ गई, ये खराबी मेरी जड़ में आ गई। और ये शेर बतौर ख़ास की बढ़ते बढ़ते बात इस हद तक बढ़ी, बढ़ते बढ़ते बात इस हद तक बढ़ी, मोच अंदर से रगड़ में आ गई, मोच अंदर से रगड़ में आ गई, और इस कदर उस शख्स को खींचा गया, इस कदर उस शख्स को

0: खींचा गया एक सख्ती सी रबड़ में आ गई, एक सख्ती सी रबड़ में आ गई। अक्ल ने बदला ठिकाना और फिर, अक्ल ने बदला ठिकाना और फिर ये खिसक कर सर से धड़ में आ गई। और इस गजल का आखिरी शेर की, उसने पहले हाथ थामा प्यार से, उसने पहले हाथ थामा प्यार से, फिर मेरी गर्दन पकड़ में आ गई, जिंदगी एक दिन अकड़ में आ गई, शायरी की नस पकड़ में आ गई। एक मतला चंद शेर ये भी देखें कि जिंदगी एक जंग का मैदान थी, जिंदगी एक जंग का मैदान थी, आदमी की राह कब आसान थी। जिंदगी एक जंग का मैदान थी, आदमी की राह कब आसान थी, और हर खुशी मेरी गमों से थी घिरी, हर खुशी मेरी गमों से थी घिरी, आंसुओं के घूंट में मुस्कान थी, आंसुओं के घूंट में मुस्कान थी, और मुश्किलों के हर तरफ सैलाब थे, मुश्किलों के हर तरफ सैलाब थे, और हर ख्वाहिश मेरी चट्टान थी, मुश्किलों के हर तरफ सैलाब थे, और हर ख्वाहिश मेरी चट्टान थी। दोस्तों ये उन दिनों की बात है, फिक्र जब मेरी बहुत नादान थी। अरे गजल का शेर सुन ले मोहतरम की, एक पगली थी हमारी जीस्त में, एक पगली थी हमारी जीस्त में, जो मेरी हर बात पर कुर्बान थी, फिर से उसमें आज शहनाई बजी, फिर से उसमें आज शहनाई बजी, एक हवेली दिल की जो वीरान थी, एक हवेली दिल की जो वीरान थी।
1: अभी आप महसूस हो रहे थे डॉक्टर अनुज नागेंद्र के कलाम से, और सामिन इसके साथ ही ये नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अदबी मौजू, नए ख्यालात और नए लाजवाब कलाम के साथ। तब तक के लिए आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज से अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को दीजिए इजाजत इन अल्फाजों के साथ कि फूल खिलते और फना होते रहेंगे, फूल खिलते और फना होते रहेंगे, लेकिन खुशबुओं का ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। इस प्रोग्राम की पेशकश थी प्रदीप कुमार मिश्र की।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
3: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
4: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
3: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो, और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर, गूंजे सफलताओं की आवाज।
5: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम लेकर आएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, लेकिन उसके पहले ये संदेश।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए
8: 0542227658।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें
9: 0542227658।
5: संदेश हुआ पूरा। कार्यक्रम लोक संगीत में आपका स्वागत है। आज के कलाकार हैं शिवशंकर पटेल व साथी। आइए सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में ये कजरी।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं शिवशंकर पटेल व साथी। अब आइए सुनते हैं इन्हीं का गाया ये खेमटा।

आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम। आज के कलाकार थे शिवशंकर पटेल व साथी। इन्हीं का गाया लोकगीत आप सुन सकते हैं दिन में 1:45 पर और शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम झनकार

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी वाराणसी है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। पहला गाना किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म है अनोखी अदा।

अंतराल के बाद फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार में एक बार आपका पुनः स्वागत। अब आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में दीवाना फिल्म का ये गाना।

अंतराल के बाद फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार में एक बार आपका पुनः स्वागत। अब आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में दीवाना फिल्म का ये गाना।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म बंटी और बबली का गाना। आवाज़ें हैं जावेद, शंकर, एहसान लाय और अलीशा चनाय की।